कहै त बांडे कत नाए टुटे ना मन लगे नाए जले ना जाए तन सुमान स्नान कर जोगड़ चले पाए चौकड़ मूरन आया बे चौके पाया।

0: पढ़े कतेबा संजम तुरका पाई छोड़ी ले पखंडा नाम ले जाय तरंदा महला पहला
1: मानस खाने करहनवा छुरी वगायन तन गलता तेन घर ब्राह्मण पुरह नाथ ओ ना पहयावे ओई साथ कूड़ी रास कूड़ा व्यापार कूड़ बोल करे आहार सर

अपनी हरता के पर आवार आप कराए साक्ती आप कराए मां एक ना गली जंजीरियां एक तुरी जरे बिस्यार आप कराए करे आप हो कैसे हो करी पुकार नानक करना जिनकिया फिर तसी करनी सा।

तहां तहां रचया रियायत देग तेग फते बिरद की पैज पंथ की जीत श्री साहिब जी सहाय खालसे जी के बोल बाले बोलो जी वाहे गुरु बोलो जी सिखा नू सिखी दान केस दान रहत दान बवेक दान विसाह दान भरोसा दान दाना सिर दान नाम दान श्री अमृतसर साहिब जी दे दर्शन इशनान चौंकिया झंडे पुंगे जुग जुग अटल।

शो तख्त राजा सोब है जे तख्त लायक होई जिन्नी सच पछाणिया सच राजे से तख्त बह तख्त की लायक पंच समाए गुरमत पायक ऐसे दीन दयाल सतगुरु चौथे पातशाह धन धन श्री गुरु रामदास साहिब जी महाराज अज दे शुभ दिहाड़े गुरता गद्दी ते विराजमान होए तिना सतगुरुआं दा गुरता गद्दी गुरपुरब बेअंत संगता सचखंड श्री हरिमंदर साहिब जी विखे बड़ी श्रद्धा ते भावना नाल मना रही हैं। जथा शक्त भेटावां हाजिर कर रही हैं। सतगुरु जीओ सरबत साध संगत नू अपने दरों घरों सिखी सिदक भरोसा नाम दान बख्शना शुभ भावनावां पूरियां करनियां हे नमाणियां दे मां।

एक ओंकार सत नाम करता पुरख निरभउ निरवैर अकाल मूरत अजूनी सैभं गुर प्रसाद चक्र चिहन अर बरन जात अर पात नहन जेहे रूप रंग अर रेख पेख को कह न सकत केहे अचल मूरत अनभउ प्रकाश अमित ओज कहिजै कोट इंद्र इंद्राण साहे साहण गणिजै तिर पवन महीप सुर नर असुर नेत नेत बण त्रिण कहत तो सर्व नाम कथय कवन कर्म नाम वर्णत सुमत अब राखो दास पाठ की लाज जैसी राखी लाज भगत प्रहलाद की हर नाख सफारे कर आज फुन द्रौपदी लाज रखी हर प्रभ जी शीनत बस्त्र दीन बहु साज सो दमा आपदा ते राखे गन का पढ़त पूरे तेह काज श्री सतगुर सो प्रसन्न कल जुग होए राखो हो दास पाठ की लाज तखत राजा सो बह जे तख्त लायक होई जिनी सच पछाणिया सच राजे से तख्त बह तख्त की लायक पंच समाए गुरमत पायक आद जुगादि है पी होसी सहसा परम चुकाया धन धन रामदास गुर जिन सिरिया तिने सवारिया पूरी होई करामात

बिखड़े प्रभ नेरहुं ते नेरिया। बिनवंत नानक दया तारहु काड भव जल फिरिया। असी खते बहुत कमाव दे अंत न पारावार। हर किरपा करके बख्श लै हो हों पापी बड़ गुन है गार।

0: रंग प्रंग अनेक ना जापन करतबा। जिया अंदर जियो सब किस जान ला, सब किस तेरे वस तेरा घर भला। तेरे घर आनंद वधाई तुद घर माण महत्ता, तेज अपना आप जर सर्व कला भरपूर दिसै जत कता। नानक दा संदास तुद आगे बिनवता।
1: श्लोक पवन गुरु पाणी पिता, माता धरत महत दिवस रात दुई दाई दया, खेले सगल जगत

0: जियो सब की जान ला सब किश तेरा बस तेरा कर पला तेरे कर आनंद वधाई तू दुखार मान महता तेज अपना आप जर सर्व कला पर पूर दिस जत कता नानक दासन दास तुद आगे बिनवता।
1: श्लोक पवन गुरु पानी पिता माता तत् महत दिसुरा दुदाई दाया खेला सगल जगत चंगियाँ बुरियाँ वच धर्म हजू करमियाँ।

जाई लख्या रहाओ जात में जो जोत में जाता अकल कला पर फूर रहे आप तू सच्चा साहिब सिर्फ वाले हो जिनकी तीसो पार पया कहो नानक करते किया बात जो किश करना।

करम्मा सारण परे की राखहु जाप ताप संयम तारम नाक माया सेवा साधना जाने हर राया कहो नानक हम नीच करम्मा सारण परे की राखहु सरमा। एक ओंकार श्री वाहिगुरु जी की फतह है। पातशाही दसवीं कबियो बाच बेनती चाओ पई हमरी करो हाथ द रक्षा पूरन होए चित की इच्छा तब चरणन मान रह हमारा अपना जान करो प्रतिपारा हमरे दुष्ट सबै तुम कावहु आप हाथ दै मोहे बचावहु सुखी बसै मोरो परिवारा सेवक सिखियो सबै करतारा मोर अच्छा निज कार दै करिया सब बैरन कौ आज संगरिया पूरन होए हमारी आसा तोर भजन की रह प्यासा तुम्हें छाड़ कोई अवर ना ते आऊं जो बर चाहो सो तुम ते पाऊं सेवक सिखियो हमारे तारी है चुन चुन सत्र हमारे मारी है आप हाथ द मुझे उबरिया मरण काल का त्रास निवरिया जो सदा हमारे पच्छा श्री अस्तो जजू करियह रक्षा राख ले हो मोहे राखन हारे साहेब संत सहाये प्यारे दीन बंद दुष्टन के हंता तुम हो पुरी चतुर्दश कंता काल पाए ब्रह्मा बाप तरा काल पाए शिवजू अवतरा काल पाए कर बिसन प्रकाशा सकल काल का किया तमासा जवन काल जोगी शिव कियो वेदराज ब्रह्मा जूथियो जवन काल सब लोक सवारा नमस्कार है ताहे हमारा जवन काल सब जगत बनायो देव दैत जक्षण उपजायो आदि अंत एक अवतारा सोई गुरु समझियो हमारा नमस्कार तिस ही को हमारी सकल प्रजा जिने आप सवारी सेवकन को शिव गुण सुख दियो सत्रन को पाल मोह बध कियो काट काट के अंतर की जानत भले बुरे की पीर पछानत चीटी ते कुंचर अस थूला सब पर कृपा दृष्ट कर फूला संतन दुख पाए ते दुखी सुख पाए साधन के सुखी एक एक की पीर पछानै काट काट के पट पट की जानै जब उद करख करा कर।

प्रजा धरत तब देह अपारा, जब आकर्ख करत हो कबहू, तुम मैं मिलत देह तर सबहू। जेते बदन श्रेष्ठ सब तारै, आप आपनी बूझ उचारै। तुम सब ही ते रहत निरालम, जानत वेद भेद आर्यालम। निरंकार निर्विकार निर्लंब, आद अनिल अनाद असंभ। ताका मूढ़ उचारत भेदा, जाको पेव न पावत बेदा। ताकौ कर पहन अनुमानत, महामूढ़ कछ भेद न जानत। महादेव को कहत सदा सेव, निरंकार का चीनत नह पेव। आप आपनी बुद्ध है जेती, वर्णत भिन्न भिन्न तोहे तेती। तुमरा लखा न जाए पसारा, केह विद सजा प्रथम संसारा। एक रूप अनूप सरूपा, रंक भयो राव कही पूपा। अंड जजेर जसेत जकीनी, उत्पुज खान बहुर राच दीनी। कहूं फूल राजा हुआ बैठा, कहूं सिमट भयो संकर इकैठा। सगरी श्रेष्ठ दिखाए अचंपव, आद जुगाद स्वरूप स्वयं भव। अब रक्षा मेरी तुम करो, सिख्य उबार असिख्य संगरो। दोष्ट जिते उठ वत उत्पाता, सकल मलेश करो रण काता। जे अस तोज तब सरनी परे, तिनके दोष्ट दुखित हुए मरे। पुरख जवन पग परे तिहारे, तिनके तुम संकट सब टारे। जो कल को एक बार ते आ है, ताके काल निकट नह आ है। रक्षा होए ताहे सब काला, दुष्ट अरिष्ट टरें तत्काला। कृपा दृष्ट तन जाहे निहर हो, ताके ताप तनक मह हर हो। रिद्ध सिद्ध कर्मो सब होई, दुष्ट छाह छुए सकै न कोई। एक बार जिन तुम्हें संभारा, काल फास ते ताहे उबारा। जिन नर नाम तिहारो कहा,

सवैया पाए गहे जब ते तुमरे तब ते को आंख तरे नहीं आने ओ। राम रहीम पुराण कुरान अनेक कहें मत एक ना माने ओ। सिमृत शास्त्र वेद सब बहु भेद कहें हम एक न जाने ओ। श्री असपान कृपा तुमरी कर मैं ना कहो सब तो बखाने ओ। दोहरा सगल द्वार कौ छाड़ कर गहो तुहारो द्वार बाहें गहे की लाज आस गोविंद दास। सगल द्वार कौ छाड़ कर गहो तुहारो द्वार बाहें गहे की लाज आस गोविंद दास तुहार। राम कली महला तीजा आनंद एक ओंकार सतगुर प्रसाद। आनंद पाया मेरी माए सतगुरु मैं पाया सतगुर ता पाया सहज सेती मन वजिया वाधाइया। राग रतन परवार परियां शब्द गावने आईया शब्दो तगा बहु हरि केरा मन जिनी वसाया। कहे नानक आनंद हुआ सतगुरु मैं पाया ए मन मेरे आ तू सदा रहो हर नाले हर नाल रहो तू मन मेरे दुख सब विसारना। अंगीकार ओह करे तेरा कारज सब सवारना। सबना गल्ला समरथ स्वामी सो क्यो मन हो विसारे। कहे नानक मन मेरे सदा रहो हर नाले साचे साहेबा क्या नाही कर तेरा कर ता तेरा सब किछ है जिस देह सो पावे। सदा सिफत सलाह तेरी नाम मन वसावे नाम जिनकै मन वसया वाजे शब्द कनेरे। कहे नानक सच्चे साहेब क्या नाही कर तेरा साचा नाम मेरा आधारो। साच नाम आधार मेरा जिन भुखा सब गवाइया कर सांत सुख मन आए वसया जिन इच्छा सब पुजाइया। सदा कुर्बान कीता गुरु बिटहो जिस दिया एह वडे आईया। कहे नानक सुनहो संतहो शब्द धरहो प्यारो साचा नाम मेरा आधारो। वाजे पंच शब्द तित कर सुभागै कर सुभागै शब्द वाजे कला जित कर तारिया। पंच दूत तुद वस कीते काल कंटक मारिया। तुर करम पाया तुद जिन कौ से नाम हर कै लागे। कहे नानक तह सुख हुआ तित कार अनहद वाजे अनद।

जो हमरी विद होती मेरे सतगुरा सा विद तुम हर जानहो आपे हम रुलते फिरते कोई बात ना पूछता गुर सतगुर संग कीरे हम थापे धन धन गुरु नानक जान केरा जित मिले चूके सब सोग संतापे कान हर बूंद बसौरो मावल कुसम बसंत गणंत नायाव राव सास किरण उदर सागर को गंग तरंग अंत को पावै रुद्र ध्यान ज्ञान सतगुर के कब जन पल उन्हें जो गावै पल्ले अमरदास गुण तेरे तेरी उपमा तोहे बने आवै सा सेवा कीती सफल है जेत सतगुर का मान मन्ने जा सतगुर का मान मन्या ता पाप कसमल पन्ने ताखत बहै तखता की लायक पंच समाय गुरमत पायक धन धन रामदास गोर जिन सिरिया तिने सवारिया पूरी होई करामात आप सिरजन हारे तारिया सिखी अतै संगति पार ब्रह्म कार नमस्कारिया एक उत्तम पंथ सुनयो गुर संगत तेह मिलंत जम त्रास मिटाई एक अरदास पाठ कीरत की गुर रामदास रखहो सरनाई अंदर सच्चा नेहो लाया प्रीतम आपणा तन मन होए निहाल जा गुर देखा सामने सो कहो टल गुर सेविया अहनिस सहज सुभाए दर्शन परसै गुरु का जन्म मरण दुख जाय होवै सिफत खसम दी नूर अरसहु कुरसहु तुद डिठे सच्चे पाते सा माल जन्म जन्म दी कटिया सजन सच्चा पाते साहु सिर साहा दें जिस पास बैठिया सोही है सबना दा वेसा सजन सच्चा पाते साहु सिर साहा दें जिस पास बैठिया सोही है सबना दा वेसा सत नाम श्री वाहेगुरु साहिब जी तनासरी महला
ਚੌਥਾ ਘਰ ਪਹਿਲਾ ਚੌਪਦੇ ਇੱਕ ਓਅੰਕਾਰ ਸਤਿਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਜੋ ਹਰ ਸੇਵਾ ਸੰਤ ਭਗਤ ਤਿਨ ਕੇ ਸਭ ਪਾਪ ਨਿਵਾਰੀ ਹਮ ਉਪਰ ਕਿਰਪਾ ਕਰ ਸੁਆਮੀ ਰੱਖ ਸੰਗਤ ਤੁਮ ਜੋ ਪਿਆਰੀ ਜੋ ਹਰ ਸੇਵਾ ਹੈ ਸੰਤ ਭਗਤ ਤਿਨ ਕੇ ਸਭ ਪਾਪ ਨਿਵਾਰੀ ਹਮ ਉਪਰ ਕਿਰਪਾ ਕਰ ਸੁਆਮੀ ਰੱਖ ਸੰਗਤ ਤੁਮ ਜੋ ਪਿਆਰੇ ਹਰ ਗੁਣ ਕਹਿ ਨਾ ਸਕਾਉ ਬਨਵਾਰੇ ਹਮ ਪਾਪੀ ਪਾਥਰ ਨੀਰ ਡੁੱਬਤ

जन्म जन्म के लागे बिख मोरचा, लग संगत साध सवारे, ज्यो कंचन बैसंतर तायो, माल काटे कटित उतारे, हर हर जपन जपाओ दिन राते, जप हर हर हर उर तारे, हर हर हर औखद जग पूरा, जप हर हर हौ मैं मारे, हर हर आगम अगाध बोध, अपरंपर पुरख अपारे, जान कौ कृपा करहु जग जीवन, जान नानक पैज सवारे। हर हर अगम अगाध बोध,

हम मांगे भगत एकाके हर के सेवक से हर प्यारे जिन जपियो हर वचन की लेखा चित्र गुपत जो लिखिया सब छूटी जम की बाकी हर के संत जपियो मन हर हर लग संगत साध जना की दिन यर सूर तृष्णा अग्न बुझानी सेव चरियो चंद चंदा की तुम वड पुरख वड अगम अगोचर तुम आपे आपे अपाके जन नानक कौ प्रभु कृपा की जय कर दासन दास दशा के तुम वड पुरख वड अगम अगोचर तुम आपे आपे अपाके जन नानक कौ प्रभु कृपा की जय कर दासन दास दशा की वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। सिर मस्तक रखिया पार ब्रह्म हस्त काया रखिया परमेश्वर आत्म रखिया गोपाल स्वामी धन चरण रखिया जगदीश्वर सर्व रखिया गुरदयाल है पै दुख विनाशन है भगत वशल अनाथ नाथे सरण नानक पुरख अचत है बिलावल महला पंजवा ताती वाओ न लगई पार ब्रह्म शरणाई चौगिरद हमारे राम कार दुख लगे न पाई सतगुर पूरा पेटिया जिन बनत बनाई राम नाम औखद दिया एका लिवलाई रहाओ राख लिए तिन रखन हार सब याद मिटाई कहो नानक कृपा भई प्रभ भये सहाई सोहला राग गौड़ी दीप की महला पहला एक ओंकार सतगुर प्रसाद जय कर कीरत आखिय करते का हुए बिचारो तित कर गावहु सोहला सिवरेहो सृजनहारो तुम गावहो मेरे निरपाओ का सोहला हाँ वारी जित सोहले सदा सुख होए रहाओ नित नित जी अड़े संभालियन देखेगा देवन हार तेरे दन कीमत ना पावै ते सदा ते कवन समार संबत साहा लिखिया मिल कर पावहु तेल देहो सज्जन असीसड़िया
ਜਿਉ ਹੋਵੈ ਸਾਹਿਬ ਸਿਉ ਮੇਲ, ਘਰ ਘਰ ਇਹੋ ਪਹੁੰਚਾ ਸੱਦੜੇ ਨਿਤ ਪਵਨ। ਸੱਦਣ ਹਾਰਾ ਸਿਮਰੀਐ ਨਾਨਕ ਸੇ ਦੇਹ ਆਵਨ, ਰਾਗ ਆਸਾ ਮਹੱਲਾ ਪਹਿਲਾ। ਸ਼ੈ ਘਰ ਸ਼ੈ ਗੁਰ ਸ਼ੈ ਉਪਦੇਸ਼, ਗੁਰ ਗੁਰ ਏਕੋ ਵੇਸ ਅਨੇਕ।

हर संग मीत बिनत करो अरदास रोजे ठाकुर भावे देहो दर्श मन चाहो भगते हो मन ठहरावे।

अजूनी सह पहंगुर प्रसाद आसा महला पहला वार सलोका नाल सलोक भी महले पहल के लिखे टुंडे अस राजे की तुनी सलोक महला पहला।

0: सच्ची तेरी कुदरत सच्चे पातशाह नानक सच्चाइन सच जो मर जमे सुकच न कच महला पहला
1: वड्डी उडे जा वड्डा नाम वड्डी उडे जा सच नाम वड्डी उडे जा।

0: भेद विस्माद रू विस्माद रंग विस्माद नागे फरे जंत विस्मात पौन विस्मात पानी विस्मात अग्नि खेड हे विडाणी विस्मात धरती विस्मात खाणी विस्मात साध लगे प्राणी विस्मात संजोग समाद विजोग विस्मात भुक विस्मात भोग विस्माद सिपत विस्मात सालाह विस्माद उजड़ विस्माद राह विस्माद नेड़े विस्माद दूर विस्माद देखे हाजरा हजूर वेख विडाण रहा विस्मात नानक बुजण पूरे भाग महला पहला
1: कुदरत दिसै कुदरत सुनिए कुदरत पौ सुखसार कुदरत पाताली आकाशी कुदरत सर्व आकार कुदरत वेद पुराण कते बा कुदरत सर्व विचार कुदरत खाना पीना पहनन

सतिया मन संतोख बजाय देने कै विचार दे दे मंगे सहसा गुणा सो करे संसार छोरा जारा तै कूड़े आरा खारा बाविकार एक हुंदा खाए चले था उतना पहकाई कार जल थल जिया पुरिया लोआ आकार आकार ओए जिया कहे सो तू है जाने इतना पे तेरी सार नानक भगता भुख सला।

आप रखन कर प्रगट आप सुनाया। सतगुरु मिला सदा मुकदे जिन्हें विचो मुह चुकाया। उत्तम यही विचार है जिन सच्चे सिओ जित लाया।

कूड़ सब संसार, कूड़ मंडप, कूड़ माणी, कूड़ बैसनहार, कूड़ सोना, कूड़ रूपा, कूड़ पहनहार, कूड़ काया, कूड़ कपड़, कूड़ रूप पार, कूड़ मियाँ, कूड़ बीबी, खप हुए खार, कूड़ कूड़े नेहो लगा विसरया करतार।

लाल छड़िया हुए एक मन अलग ते आई है। फल दे वे हो पाई है जे वे ही कार कमाई है। जे हो वे पूरब लिखिया ता धूड़ ते ना दी पाई है। मत थोड़ी सेव गवाई है।

ज्ञानी नचहेवा जेवावे रूप करे सिंगार, ऊंचे को कहवा दागावे जोदा का विचार, मूर्ख पंडित हिकमत हो जत संजय करे प्यार, धर्मी धर्म करे गवावे मंगे मुख द्वार, जति सदावे झुक न जाने छड़ बह करवार, सबको पूरा आपे होवे कट न कोई आखे, पत परवाना पिछे पाइए ता नानक तो ले आ जापे।

देखत दर्श पाटक भ्रम भाजत दुख पर हर सुख सहज बिगासे सेवक सिख सदा अत लुभत अल समूह जो कुसुम सुबासे।

सुर नारय सुर अंत नहीं पायो, पायो नहीं अंत सुरे आसुरे नर गन गंधर खोजंत फिरे। अबनासी अचल अजुन्ने संभो पुरखोतम अपार परे। करण कारण समरात सदा सोई सर्व जी मन ते आयो। श्री गुर रामदास जय ओ जय जग में ते हर परम पद पायो। सतगुर नानक भगत करी एक मन तन मन तन गोबिंदियो। अंगद अनंत मूरत निज तारी अगम ज्ञान रस रस्यो हियो। गुरु अमरदास करतार कियो बस वाहो वाहो करते आयो। श्री गुर रामदास जय ओ जय जग में ते हर परम पद पा।

मोह परम पै पुले सोते दारा से प्रीत लग एक उत्तम पंथ सुनयो गुर संगत ते।

0: बस राखू सरना
1: सुख टल गुर सेविए एहनस सहज सुभाय दर्शन परसे गुरु के जन्म मरण दुख जाय होवे सिफत खसाम दी नूर अरसों कुरसों चटी तुद डिठी सचे पातशाह मल जन्म जन्म दी कटी सजन सच्चा पा

गोर हाथ धरियो मेरे माथा, जन्म जन्म के कल विख दुख उतरे, गोर नाम दियो रिन लाथा। मेरे हियर रतन नाम हर बसे, गोर हाथ धरियो मेरे माथा, जन्म जन्म के कल विख दुख उतरे, गोर नाम दियो रिन लाथा। मेरे मन भाज राम नाम सब अर्था, गोर पूर हर नाम दृढ़ाय, बिन नावे जीवन बिरथा। रहाओ बिन गुर मूड पै है मन मुख, ते मोह माया नित फाथा। तिन साधु चरण ना सेवे कबहु, तिन सब जन्म अकाथा। जिन साधु चरण साध पग सेवे, तिन सफल जन्म सनाथा। मोक की जय दास दास दासन को, हर दया तार जगन्नाथा। हम अंधले ज्ञानहीन अज्ञानी, क्यों चाल है मार्ग पंथा।

मम अंधले ज्ञानहीन अज्ञानी क्यों चालह मार्ग पंथा। हम अंधले को गोरे अंचल दीजै,